0: की हमारी हंसेगी हंसेगी हंसेगी मेरी प्यारी इनामी नडिका
1: इनामी नडिका
0: डाइडमनिका
1: डाइडमनिका
0: मकनकनका
1: मकनका।